कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तक आसनं रतंत मूढ़ अज्ञान अंधे नामिक सुपन।

बस हम तो स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड तमाशया चित नया वसना नानक कोड़ी।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

जपंत नानक हर हर हरे। छड़ियो हबे आपे लगनो चरणा पास।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। विगस्यो पेख रंग कुसम को, पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बो पाती, ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन कोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हरे, भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे, राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा, कामन थाट बनाया। संग न पायो

आया। भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा। लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो। महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो त्वारो पावो। जो तू दे तही ए तृप्त आन न कथू तावो। सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है। साधु संगत होए परापत ता प्रभु अपना लही है। सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले। मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम। पाए पाए बहुविद को तावे सगल निरारथ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम। कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे। जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है। नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है। विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ अवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। कवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सवाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको

बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी, रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित ऊख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया, टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके गृह में आया, टोडी महला पंजवा, कर चौथा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़े, गाली हर नी न होए, रहाओ हौ टूंडे दी दर्शन कारण, बीची बीती देखा गुरमिल परम गवाया है, ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माते, ए बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा। गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे, हियो महराज री मायो, दीहर न्याई मोहे।

अगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासत मिट्यो रे। जा को लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्व।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन। रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना विचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान। रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुन गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जी।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहा। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिद्दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब छूटे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ।

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस्दिन, छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहीं अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम ले कही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुत्र।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे बेल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे राम।

सुन मन अकत कथा हर नाम। रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम। रहाओ नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिन को, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुर दान दिवायो। रहाओ किस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर, तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी, दुख हो में रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता, जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात है उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा, जप मन हर हर नाम हित जाए, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर्षो प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत हो।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साए साचा केले सब हरतनी साला है सच सब ऊपर हरतनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित नावे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाज ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरे संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बाँचो दूर। तिलंग मह

प्राणियां कुदराथे दा सृजनहार जिन पैदा तू किया सोई दे आधार जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार कट कट

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सुरैन जे खुद अरादे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार

वारी कंत लिया सुहागनी मैं ते वदनी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए

गुण कामन तामन करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। ताप मिले कुन ताप को लिव लिवे को तावे, गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया हो वे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो ना

हरतिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

या से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे किन दर्शन दीजे हम किन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर के प्या रंग रलिया माने सतगुर दाता आपिए उस परे पसाओ है गुर वित्तो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वलदाने हो सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुद पावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी।

मात पिता सुत बंग जन सुत जातियों की ना जियो छूते हो जब देहते दार अगन में दीना। जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन सुमानो। तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान लै मेरो। रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

और क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ, कुजा आमद कुजा रखती।

दूत करम पुन सुरत समायण होय निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मत

इन दिग अमृत पावो। मन संपटे जित सत्सर नावन, पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे, तुम सर अवर नख

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सो चाकर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुंगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश जी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

इन विद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से बाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेश लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान है, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ लगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपल जा, दर्शन संत जीव सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर दौड़ न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के प्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे ब्या प्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। राव रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भया।

तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिख लिला रहा, तिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए, हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे, तिस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका, जिना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर हिंदक कै पवे चारा। जिस कार वृत्ति सोई जाने, जगत

मैं होर ताओ ना ही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझी पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक पैसाए राखे, मन हर जा परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती

क्या तुझ पे आग सुनाई है, बुरा पला तुझ पक्ष सूझे, जिहा को करे तिहा को पाई है। मेरे साहेब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत कराए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, देही तू नजर करे केहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय, गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर

जल फल मैयल रे आपरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो में जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम।

सुहागण अंक समावे, गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनों करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा परपूर, जन नानक गावे देखा दूर, हुई महला पंजवा, गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी, कौन कहा गुणकंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे, गुण कामन कर कंतरी जा।

मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा उमक्यो ही मिलन प्रवताई खोज चरियो देखो प्रह जाई सुन सदेश प्रह गृह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती फिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे

होए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें तिरपाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह तिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन करते चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देख की वड़ियाई, तुम सुखदाते पुरुष वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद करन सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुही महला पंजवा,

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, तुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोह।

आश्रिते न विसरें काहू बेरा रहाओ। बैखरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा। कोट दास जा कै दरबारे निमख निमख वसे तिस नाले। हों किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक।

कहें गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करें हर रंगा, कहें मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सोही महला पंजवा, जा कह दर्स पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे,

कृपा निधान नानक सौ करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरै दिन रै नारे, सुही महला पंजवा। तवन काज माया।

जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह त्यारी।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पति पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जा।

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, पाद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवां। गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवां। गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवां। दर्शन देख जीवा।

पहर सनाहा कोट आवज किस बेदत नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ राम।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ ठाकी,

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराय खुनामी कहाए, जो तिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहे।

सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी, रैन दिन गाओ, जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ। सो साहो सेव जित तोट ना आवे, खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

अब गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माधवे पज

हरण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उधर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साध संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से। गुर पूरे मिल पाप जायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याय। पूरब लिप्त हुए ता पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंदिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचूक अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

ना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहाओ निर्गुण हरिया, सरगुण करिया, अन कोठरिया, पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया, निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया, नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया, बहुविध क्रिया, पर को हिरिया, दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया, बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अप

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै सो परवान, मन तन तू है।

तू दयाल कृपाल कृपा निज मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुख दाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा जे स्वामी तुझ पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठ है पावा। तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुझ पिराई निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया। रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे दिल लाते ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन के ट्यो

निमुख सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ। कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपनी।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पए निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पए तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझसे कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहा गणती गणी न छूटे कतू काची देहे आनी कृपा करो प्रभु।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाए उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सोही महला पंजवा, तुझ चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुझ सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी, अरदास करी।

तेरे दर्शन को बल जाई, अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो इक दाना, साहिब तुठे पावा, सास सास नानक आरा दे, आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने मा

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्यारो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर सात संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूजे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी पुख जियो। बाकी वाला तल भी है सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शनहार जियो। अनको की जय मित्रा खात रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान विगुची है बुरा पला दोए नाल जियो। दिन सब दे तै रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया, चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

आपे रहा समाए सो विस्माद खाया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरुमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम न जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव न जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई रहाओ। गुरमुख गावे गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार्य सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिख खटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कौन चढ़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह, पूरे गुर से पाए। तन मन सब किच हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता, सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अपसवालियो तिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का सबद समाले हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर सब किच वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही कां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहिबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिय वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंदन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। हे मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे

मन मुख मन न पिजई आत्मे ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसनी कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सो लिव लाए हो मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना बिछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोह दूजे व्यापिया गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंग।

आए कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए चिरी विछुने भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर सो केल किरण सज्जन मिले ना विछड़े जे अंजन मिले रहन इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसे मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हों तिनके बलिहारने मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान गुर पूरै वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय गुर प्रसादी मन वसै तित कट प्रगट होए सब अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा कला चिचर आपदा जिचर है दो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए खाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सोही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा हम किसपे आप विचाई दर्शन हर देखन कहताई कृपा करें तो सतगुरु मिले हर हर नाम से आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे भुख देहे ताई ती राजा दुख भी सुख मनाई तन मन काश काश सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाई नानक गरीब कह पया द्वार है हर मेल लहो वड्याई अखी काड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई जे पास बहा लेता तुझे अराधी जे मार कढ़े भी त्याई जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई जे तुद वल रहे ता कोई क्यों आखों तुद विसरे मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई चखर चांगी मीह वरसे पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यो धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिकसाई सेवक का होय सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई जो तुझ सेवे सो तू है होवे तुझ सेवक पैज रखाई भंडार परे भगती हर तेरे जिस पावे किस देवाई जिस तू दे सोई जन पाए होर नेफल सब चतराई
सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किछ थाए न पाई। पाला ककर वर्फ वर्षे गुरसिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभु रहो है जत कत तत गुसाई। राग सोही महला चौथा अष्टपदियां।

क्या कै संगा मन व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कप पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिर बेगाना सगल ब्याज कै वस्त्र दीना फिर प्यास जो जल बिन मीना कछु सियान उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम

हौ ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरो महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंध पौ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्स रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किलविक वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाए मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नामी दातार।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाम जियो जिन्नी सकी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे हो जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाम जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सद कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल है आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो सुही महला पंजवा गुणवंती जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निवला गो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

जियो हौ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हौ रजा तृप्त अघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ नव मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक में वर्षाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बन जा सहोरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना रहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए बिचुन्नी बाली बाले ते नानक साथ सब सुख मैली गुरचरणी प्रवचे थे बाबुल दुपड़ी दूर ना आवे कर कही है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोही है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया हम दिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तब पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत पे कुसत्यो दाता।

गुण संग्रहम सी खरी सरसी जहाँ रावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रसाद राग सुई छंक महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया विया हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता अवरीता ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा को हो वे वासला कड़वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कदवास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखनता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान हर मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नाम का सच सोई आप करे किस आखी है होर करे ना कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार था के कूर कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई।

किया, गुर कह मोल कराया, आप लड़ा प्रभ सहज पछाता, जामन सा फैलाया। तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा, क्यों मिले होए पराया, साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता, प्रीतम स्यों मन मानिया हर से तीराता, साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच पू नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सवारिया। हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे, तुद पावे सच सोई, आवन जाना नाची है साची मत होई, अंजन कैसा अंजी है, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जानिए, जे आप जनावे, आप जनावे मार्ग पावे, आपे मनुआ ले गए, कर्म सुकर्म कराए आपे, कीमत कौन अपे वे, तंत मंत्र पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया, अंजन नाम तिसे ते सूझे, गुर सबदी सच जानिया। साजन होवन आपने, क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही, मन माहे साजन करें रलिया, कर्म कर्म सब आया, अठहठ तीर्थ पुन पूजा, नाम साचा भाया, आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया, साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने, आप मुझसे मत होछिए क्यों राह पिछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे, मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

सोई, ताकी कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुझ पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्याव, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्याव, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो।

जन्म मरण को पागा। अंदरों दुर्मत्तु जी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी इन अंगन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम तारा।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हों मैं सबद जलाया राम, हों मैं सबद जलाया, मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करें दिन राती, गुरमुख आप वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन भाया, नानक भगत सोए दर साचे, जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात पत है, भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी, हम जिन भगत करे दिन राती, कर ही मैं बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर साचे, अम दिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया। हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया। सुही महला तीजा, सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौ मैं सब किल काटे, साथ रखिया उधारे राम। सत रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर फल जल करण न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई। नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, तक राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई, मरे न कोई, गर्भ न जूनी वासा। ज्योति ज्योत मिलाई, सच समाये, सच नाये प्रगासा। जिन्नी सच जाता, से सच्चे होए, अम दिन सच त्यायन। नानक सच नाम जिन हृदय वस्या, ना बिछड़ दुख पायन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, चित कर सोहला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वर्तै सचो बोले, जो सच करे सो होई। जय देखा तै सच पसरिया, और न दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे, मर जन में दूजा होई। नानक सब कुछ आपे करता, आप करावे सोई।

हुई, सच्चा सब सच्ची है शोभा, साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी, दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा, जुग चारे तांजे पवे,

प्रभ आप मिलाई राम गुरमती कर चानन हुआ प्रभ रव रहा सब खाई राम प्रभ रव रहा सब खाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया शेष खाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते हैं नाम नवै निध पाई सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजिन पंक्त करे गुर आगे साथन कंत प्यारी गुरु का शब्द वस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी

सतगुरु हर मार्ग पाए। संत संगत स्यों मेल पया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सब जीवन मुक्त पए, हर कै नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए गुर मेल मिलाए, मनुआ रता हर नाले। सुख दाता पाया मोह चुकाया, अंदर नाम समाले। गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन करे सद ही सोयला, जे सतगुर सेख समाए। बिन सतगुर जग परम पुलाया, हर का

हर मन पाया सदा गावे रंग राते, हर के पग सदा जन निर्मल जुग जुग सधी जाते। साची पगत करें दर जापे, कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोईला।

सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर के सह सुवाए सापन कंठ प्यारी सत संजम सदा है निर्मल गुर के सचिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नानक सदा फिर रावे अपना जिन गुर चरणी इतलाया। फिर पायड़ा बालड़िए अंदन सहजे माती राम गुरमती मन अंध भया तित तन मैल ना राती राम। तित तन मैल ना राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए अंजन रावे हर प्रभ अपना विच्चों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई प्रभ रावे रंग राती। फिर रावे रंग रातड़िए फिर का महल तिन पाया राम सो सहो अत निर्मल दाता जिन विच्चों आप गवाया राम। विच्चों मोह चुकाया जा हर पाया हर कामन मन पानी अंजन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी। जुग चारे साचा एको वर्ते बिन गुर किने ना पाया नानक रंग होवे रंग राती जिन हर से की चितलाया। कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरुमति मन निर्मल

आए रंग सोरलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुरु पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलक लखाया सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो

हर तूर देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम। पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम के आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अम दिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम।

राख लाज पदवाना, सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, ने चल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस्य उपजय मन

वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजे हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम। हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे।

तू करवत मेरा ओला राम हों बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा साजन पोख सतगुरु मेरा पूरा तिस दिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जन पंख सा दे दुख न व्यापे कोई जल थल मई अल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सह सियाना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किछु तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा।
सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर जो गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नींव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मन उठा राम गुरुमुखे सच करने सारी बिन से प्रम पैच उठा राम अमहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंकन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नवनिध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच करम पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई है सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्क पल सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहु न मरिये चूके आवन जाना जो किछ करे सोई पर मानो तामन सह समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आ गया तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाए सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कहो नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे मित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पर कंजन, अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बोर न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सुही महला पंजवा, संता के कारज आग खलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद दीने करते, तोट न आवे काई राम। खास खर्चक बिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निखुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ ना थे, दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया, मानस क्या वेचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे, साथ संगत संग बनी, जिन उद्दम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने। पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हर बिर सदाए, एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा, नानक दास वा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हों चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा, इस जेवल अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया, कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी साथ।

काटे सब के मद सबू ते बार राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी।

परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा ने स्वामी बड़ पागी हर हर गाया।

तू है वेश दुहागणी। पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए, मिठा करके खाया बहुसादो वध्या रोग, खुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार, सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार, आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली करतार, नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूवीए निमानिए सो सं सदा समार।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती के तेरा सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुब ये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में तूर सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीर सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाए नी फिर आवे जाए जो तिस पावे सो थी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सोहरे बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सदगुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पाप विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाय को आई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सुहवीए सुहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार सूहे वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन सबद मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार मुंद सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता सिर उपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन।

जा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे सुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निबिव्या नानक एहो पटंतरा तित दी बाण गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता।

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पे गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो तरे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजै तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग सिउ होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप छड़ो वे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मन मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुबे थी मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

नानक एहो तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया पौंदी जाए कराल पिछे हक नाम बड़े तित निवंदे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सलग निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक पौ लखी नात्या देखा चढ़िए सहोर बहर धोती तूमड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलायदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै दिस ए मन पाऊदा गुर ठाक रहाया नाने नो सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ वापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन होमे विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल रचायन सब वरते आपे। श्लोक महला पहला चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान सिफती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौलिए पीसाहू स्यों पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कट्टर कछिए पूरा पैनन मान। महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान नानक जिन्नी सुन के मन्या हम तिना विटो कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हमें झगड़ा पायन झगड़े जग मोया गुरमुख झगड़ चुकायन इको रग रहा सब आत्म राम पछाणिया पौदल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह में तू समरथ दार सौ में गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार एनस नव तन निर्मला मेला कबू न होए नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए। महला पहला इको कंत सवाइया जिती दर खड़िया नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया। महला पहला सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित। महला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात सब राती सोहागनी इक मैं दुहागन रात कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जो कर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर
जग में वरत आप हर से प्रीत।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कार लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर कै सब सलाइए।

क्यों ना मरी जा रोए जालग चितना आवई महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालियो नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागती तिन लह छड़ाई नानक वे परवाओ है तिस तिल ना तमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के

राम को नाम न कभू लीना। राम न जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार इक्सर दुख पाया। कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए। रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। त्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बदारा। काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया। रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया। कहो कबीर तेरी नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया। जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक समाया। बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। रहा तब लग प्राणी तिसे सरे हो, जब लग कट में साता। जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर, चूपे तिसे प्यासा। हुक्मे बूझे चौपर खेले, मन जिन टाले पासा। जो जन जान कजे अवगत को, तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे, पाल जो जाने पासा। सूही ललित कबीर जियो, एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला। जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया। तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे, रैयत बसन ना देही। डोरी पूरी मा पैना ही, बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे। सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिन नहा निरंतर भगत न कीनी। पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मरना।
क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरा नो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यह पन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पाती में पतली सह केरे बोला, दुद्दा थनी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग अधेयो रहाओ। माया मोह तरकटी नार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चामन अंध्यार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही तो कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम फुले गौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रब विसरे हो मरो दुखाली, सास दिरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रब अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हो मैं लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ये जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे, परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोले आ जाए, दूजा होए तो सो जी पाए, किसते दूजा ना ही कोए, तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवती लाए, आपके परके आप चलाए, आपके तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए। आपके लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपके सतगुरु शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरचेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चला

कै सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाए हर गुण गावे सह सुवाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर सबद मिटिया ज्ञान मेरा सदगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत ना फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हौ मैं माया सब जलाई दरसा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभवै मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे न जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सब ही लागा सहत्यान हम जिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जय देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का सब तक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला धरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना ओ तोड़े तोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पद कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जनमानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मती शरणागत पुरुष अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो ने फल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा कोई फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा
ते नर पाधीन बहुचारी होय जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाहत दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब दिख रसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर तजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार गम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी। अपना भला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वक स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तुम्हें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अम दिन अनद अनंदे। कर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकट मूड माया के बद्धिक, विच माया फिरें फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो, हर संत पगत पारनो। हर पर पूरे रहा जल फले, राम नाम नित गाये हर दुख विसारनो। राव हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसारन हारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी। सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक किस पगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला।

हर कृपा मोहि मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो। क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ। परम चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्व पुयंगा हूँ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल शिगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल सा गुरु मिलावे। हूँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर कुसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल। जिन चाखिया किस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल मैला कन्या सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ। सबनी थाने रवे आप आज जुगा जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने उठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोय अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोय निर्गुण ली जय लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नौ ही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम अवताज। चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा यानड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान का बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक रहा। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नाम की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अरादिए निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारु पारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल महला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली सुखी ना होत जियो। मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो नानक से दशोभा वंते जो प्रभ अपने कियो।
हर चंदोरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसो वड़ पागणी सखिए संता संग समाई है कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है कहे जन्म ना मरण ना आउन जाना नेचल सरनी पाई है प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आई है दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अनग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए रहाओ अनिक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल न जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़ पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

हाँ, बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रब मांगन, तुम पे खत्सोगा मेरे आंगन, रहाओ, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रब दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा भूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिक ताना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबंग कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड पागी पाई है, मिल साधु हर नाम त्याई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ, अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए, बिलावल महला पंजवा।

ना रहाओ। अंधकूप से पर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पै परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता। चरण कमल सो लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत। जल न बुझे हर हर गुण गावत रहाओ। सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहाओ। भगत वचल पै का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ। एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान सब तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया। महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया कटल बिसरिया। वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय। सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी। अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे,

पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम रंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा शक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपट फाक दले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

तो संताप बिना से हर सिमरत तिल विकसना से अंत करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी प्यारी सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता बंधन बाध्या अत विकराल दिन दिन छिजत विकार करत औद फाही फाफा जम कह जाल तेरी शरण प्रभु दीन दयाला महा विकम सागर अत पारी उधरो साधु संग रवाला रहा प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल तम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया सात जना होए कृपाला विक्षे सब परवारया कारज सतगुरु आप सवारया वड्डी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारया रहा वंत्रण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी सधारया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा साथ संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल आपे सतगुरु आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गान ऐसी प्रीत करो मन मेरे आज पहर प्रभ जानो मेरे रहो कहो नानक जाके निर्मल काग हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहो राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे त्याई नानक गुरु पूरे शरण आई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुरु कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे कृपार नानक दास ता की शरणाई जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सब ले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवसत जोग आए बसो पर देश में ए तले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना एक उर की टाल बहु जोनी जन्मे मरे बिख्या विकराल सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज अनंत सुख पूरे गुरु दीन सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ जय जयकार जगत में लोचे सब जिया सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु कस बिघन न किया जाका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे सतगुरु प्रसाद मृत मंडल जग साजिया जो बालू कर बार बिन सत बार ना ला गई जो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया।

आपनों किस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता, श्रम करते दम आज को ते गणित नीता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिनबाद रहाओ। रूप तूप सोगंधता का पर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत। नेचल आसन मिटी चिंत माही दोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रत्येक नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साथ संग हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी। जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी। रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अपदारी। निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अनंद होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारण साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उपत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल,

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसापुर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना।

राज मिलक सुखदारिया अग्नि में जाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान भगत जना का लूगरा ओड नगर ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पट खोई साकत से मुख जोड़े है अदवी चो टूट है हर जन की सेवा जो करे इत ऊतें छूट है सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनपते न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया धर्म शिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर राया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुख जन्माया परमाया, नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभसो रचो कज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी ए हे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुर पूरे उपदेशिया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंगराता। बिलावल महला पंजवा। महा कपत ते कई शांत पर सत पाप ना

जिन प्यो तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिला अब आए, बस संग हर साध कै पूरन।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर लिव लाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

अपार मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभु का को लाओ सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभु परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जागया तेथिया बसमाद की अमृत कृपासया ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का

जम काल ब्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन यूं सुनी भगतन की बानी सबल।

जगत सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौना है। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ कौ शरणागत माधवे पूरन दयाल छूट जा।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभु अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभु दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुटे जो ऊपर लादा। रहाओ जब तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे,

शीत करता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहें विरले जोगी सर,

कर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार, भगत आराधे एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जा का।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगट भय संसार में फिरते तय नाम, नानक के शरणागति कट कट सब जान। बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप।

अरबाब जन तुम अंतर जामी खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। पासी भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत मनाई राम नाम और सब दिया एक।

अपने बाल आप रखे पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद भय पूर्ण भय से रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोष हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांस फल दित्यन नानक बलिहारी।

साकत गीत नाद तुन गावते बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए। अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दृष्ट पाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन से जय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई तल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ को सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

नानक की बेनंती प्राप्त है साथ संग रंग तार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिन और रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तंभ के जात। त्रिपत अघाये पेट प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत।

रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिलसे, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार, सब गुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारा संसार। रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार तिहि मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ विस्मन विषम पय जो पेखियो, कह न जाय वढाई, मगन पय उहा संग माचे, ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा,

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूरण, एक है प्राणधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासू राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोट छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर खाड़े,

सोए रहो मदमावत हैं, जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जो पहावत है। कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जो वडकागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साथ दया रहा तब ते दुर्मत दूर पही रहा पूरन पूर रहो संपूरन शीतल सांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अंकारा तंते हुए सगल खई सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत्र लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वरन ना साके एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई क्या कथी है किस कथन न जाई जह जह देखा कह रहा समाई रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए कह मेरे प्रभु तू है सहाई शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित एक निमक जताई है अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को तिसकी लई लई फुन जाई है नानक शरण शरण सुख सागर मुहे टेक तेरो इकनाई है बिलावल महला पंजवा संत शरण संत टहल करी तंग बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहा सुख सहज हर कनो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरन ना सातू गुर पूरे मेरी उल्ट तरी देखो मोहन सब कह संगे पूर्ण न काहू सगल परी पूरन पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता।

ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है।

करण करावे मुकर पावे तेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ। काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा बिख्या में लपटाए जरे। अंध कूप में परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा गुर पेटे काटे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना तय आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा त्यानप ते सब पई स्यानप प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले अमृत नाम हृदय मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाए।

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाहे। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहरा जंगा, कभू न बिसरह ही मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आदे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ पाग लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पास रहाओ। काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत।

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस्ती ने जिन सगले जंत चरण कमल नान।

आप पाप से राखे आप, शीतल पर गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय में जाप रहो, कर कृपा हस्त प्रभु जी ने, जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख अन...

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभू ना हो वो दृष्ट गोचर, जीते संग बसे।

की तरफ रखपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभापे। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, करत विकार निष्फोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन रित खाते, मुख दंता कस छीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

को शब्द में रही रह बास है। हर नामा मन संग करो तस्कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई फल माने पावन दुबदा दूर करो। नानक के प्रभु तुम ही दाते संत संग ले मोहे उद्रो। मिलावल मेला पंजवा ऐसी दीख्या जंसो मंगा

निध निधान नानक हर सेवा अवर सियान सगल अकाथ। बिलावल मेला पंजवा अपने सेवक को कबू न बिसा

पंजवां आगे पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नीमया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर की।

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

फूल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक है हर ला है अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण है। राग बिलावल महला नावा दो पदे।

को ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही रहा, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जा को।

सब कोई, कत कत बाद करे दुख होई, कत सहने ते रहे न कोई, दिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नामो भूले थाउ न कोई, मन माया बंदे ओ सरजाल,

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे इहो मन पुन पाप कुचरे माया मद माके कृपत ना आवे कृपत मुक्त मन

रहे नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुखतिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंदाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपके अलख लख।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कह

अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

आसा आस करे नहीं बूझे, गुर कै शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होआ, मन दह जिस चल चल गवन करैया। प्रभवन करे बूझे नहीं कृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सुखे बहु तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवे, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज,

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई।

हौ आकल बिकल पई गुर देखे हौ लोट पोट होए तैया रहा हौ निरखत फिरों सब देश दिसंतर मैं प्रभु देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाइया कोई आन संदेशा दे प्रभु केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभु मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभु प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभु लैया भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया सीमा सिदार करे प्रभु खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभु मेरा हम तिस आगे जियो कट

बूंद मुख पैया, मिल मिल सकी हर कथा सुनैया, सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तिस आगे सिर कट कट पैया। रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद न कैया, वैदक नाटके देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया, हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया, जिनको प्यास हुए प्रभु केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस वितों बल बल कुम गैया,

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल को।

प्रन्यास इत निमख रहन न जाए, वड पाद नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। ज्यो मीन जल सो हेत, अल कमल पिन ना पेत। ज्यो चकवी सूरज आस, नानक चरण के आस। ज्यो तरन परत परान, ज्यो लोभी है तन दान। ज्यो दूध जले संजोग, ज्यो महा खुद आरत भोग। ज्यो मात पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन

छोटा खाए बिन गुर शब्द ना छूटस कोए पखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़

पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम पूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर सा

गुरमत मेले भगत दृढ़ाए। षष्ठी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पट पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सप्त संतोष शरीर, सात समुंद परे निर्मल।

आओ तिस में मनु आ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाव नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

डांडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सचमन पाए। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड दया लिवलाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सोजी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

नो मार न सके कोई। दिसदा साहिब डाडा होए किसनो मार न सके कोई। साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे दे वड्याई। किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए। गुरमति सांत वसे शरीर शब्द चीन फिर लगे न पीर। आवे न जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सह समाए। नानक गुरमुख वेखे हदूर मेरा प्रभ सदरया भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हर आप कराए। एको वर्ते अवर न कोए मन रोस की जय जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी। सिखी वार सब सब सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए। सिखी वार सब आवे जाए गुर शब्द ने चल सदा सच समाए। सिखी वार ता जा सच राते बिन नामे सब परमे काचे। मन मुख मरे मर बिकती जाहे एक न चेते दूजे लोबाए। अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार। आप उपाय उपावन हार आपे की सुन गुर विचार। बहुते पेख करे पेख तारी पव पव पर मैं काची सारी। ऐसे सुख ना आगे होए मन मुख मोए अपना जन्म खोए। सतगुरु सेवे परम चुकाए कर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सोए एक ही वार दूजा दोए। सतगुर बाजो अंग गुबार सिक्की वार सेवे मुग्ध गवार। नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए इकत नाम सदा रहा समाए।

मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब फिगारिया, कर जोर गुर पै कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकत कथिए सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवै साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कै पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगतूती, संग तकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। बिलावल मेला पहला, मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब जतो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूर कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया। महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार विजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभु हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभु हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंगेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभु अगम दृढ़ाया, मन सन रंग पीना राम, भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम, बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन नीना राम, सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग, गुर पूरै वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम, गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम, अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम, हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम, गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम, अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटाई राम, जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम, तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम, अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम, गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम, जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम, हम मूर्ख मूड मिलाया हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम, जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम, जन नानक नाम सलाई।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम, अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते, सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, बिन वंत नानक करो कृपा लहो।

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस लाह बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह।

कि आओ सखी वस आओ सखी अति तिरका मंगल गावे तज मान सखी मत अपने प्री संपावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्फे दिखंडनो हुए दास दासी।

ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाल दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीरे व्रत पूजा बात काटे जोनी, नानक प्रेम पै दया तारो।

क्यों मोए रखो मोए मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है मुख पर है हरे प्यास मेरी जी हिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते कीत चित वो मित अंधारे जो आख चतवी दिन चरे नानक पयम पै प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसकना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण

सुंदर सांस दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो। संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वै पागो राम मानन मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा कृम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम, नानक

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिवलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत्संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वक्त भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सित कर खुद अपर कोई न सके सब चक चक पवे चढ़

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले।

जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चितलाई है गोहज गल जी की चीच है सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सुख है जिहा कोई खेते हा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैज पथरिया गुर कहते सुबाए नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे मानस से देवते पे सच्ची पदक जिस दे हमें मार मिलायन गुर के सबक सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस नीति चख मारी जा सके स्यों बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुग ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए हर सुख पल्लव से आ गया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन भाई।

बख्शे करतार नानक गुरु प्रसादी यो मन ता तरे जा छोड़े अहंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी कूड़ियारा के मोख टिकिए सच भगत वध्याई सच साहेब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग सत गुर पाइये जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडे आई होए मैला तीजा ते मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान

ये जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा। मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक सो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चुकलाया।

नानक नाम रते से जन समझे जे आपे बख्श मिलाया मैला तीजा। नानक सो साल आई है जिस वक्त सब कुछ होए किस सरे वो प्राणी हो किस दिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिन को पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत खोन सगवा भी आप लखाए जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हस ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला तीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचों जाए जो किछ होए सो सहजे होए कहना किछु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए मैला कीजा। काल मार मन सा मने समानी अंतर निर्मल नाओ अंदिन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंदिन हर गुण गाओ निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जले हरी तो गुर हर तन हर पासो देवाया जो कुछ है क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अक्के कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे जिसनो करते तुर लिख पाया। इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे कैसी बने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे किसका मोह हर चौ कुंडा विकाला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

ना मरे ना ई हट विकाए गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारण शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरों हुकम बुद्ध निशान पुत्ती ताती जावाई सकी अगो पिछो टोल जिठा लायुन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शो से सब जान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल सुजे जे वे मुख होवे।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया पूरे कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचै रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

ने तिस साथ गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना।

रे तू दे रे कि चलो तुम नतर को तक्का गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जाइए रे मानस बपरा मूसा तीनो मीस बिलैया खइए रे तनमंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न कब

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंडा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौगल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहा बिखे बिखे की बात सुना तजिए न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व आती तुम समसर नाई दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित उत्पोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इन मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें ले उदरे बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहा तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा परम क्यू को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील कर्म जब पगत न कीनी हो अभिमान तेड पगरी रहाओ अमर जान संखी एक आया तो लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर एक गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे खांडे दरबार कुछ दिन सुर्ख करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहा तुम तन तनी उदार त्या

संसाधारी क्रम कै पाए पवे तेत पारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुरु साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप आपते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निध ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तोले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

भगत की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध करतले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत

बिलावल जिहे कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिस खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा पगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप

वे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिर थी जाए रहा। जो दिसे माया मोह कुटा

सुन में चूट दिन सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो सुन में किलवित सब करे बिनासा। ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह ना

बहुत कदाचार, अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी

आयु मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुल उपकर दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों की जय मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना। जैसे सतप सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राख है सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई एक तिल।

अरे अविनाशी सदा चुर नहीं चलत तुस मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान, जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, त्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ई है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ई है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपुर है हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बार नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चीज सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौण महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सा

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भाए ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ अवाए ले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जाए ले रहाओ। जो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़ो कुटुम्बाए ले, जो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाय ले, जैसे मीन रसन साध बिन से।

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु ताज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सुजय निरंजन देव। रहाओ जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ पत पर लो निमक मझार।

चेतक गणे। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कथा देव है आधार। सतपुरुष जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमुख जप गाओ। बाल सिखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा।

नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात, नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो दीठा, नामे दरगे

तो मान सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, बियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगत पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिखो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ, जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पावन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाके रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुकत ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा

पुरख भगवान गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी। गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए।

आए रमत राम सब रहो समाए संत जना मिल बोलो राम सबके निर्मल पूरन काम रहाओ राम राम।

राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लीलाए, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिछ गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम तै पार उतारे, सबते ऊच राम पर गास, निस्बासुर जप नानक दास। गौण महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संग ते मार बिदारे, गोविंद भगत का मैल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार। राव जगत पास ते लेते दान, गोविंद भगत को करे सलाम, लूट ले सात पत सोवे, सात जना पग मल मल तोवे, पंच पूत जने इक माए, उत्पुज खेल कर जगत भी आए, तीन गुना के संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए चढ़ाए, जिसके से तिन रखे हटाए, कहो नानक भगत प्रभ सार, दिन पगति सब होए खुआर। गौण महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाए, दुख बिन से सुख की नो ठाओ, जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपते जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे। रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे, अग्न सागर से उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभ त्यों लागी।

प्रगास भगत पाए हर कीर्तन करिए जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस संते मार होए रही है सगल की रीना कट कट रमैया सब में चीना इन विद रमो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को यह सुहाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौन महला पंजवा। सूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पै वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण।

तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर पर बोहित प्रभ चरण अंतर्जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंचदूत पागे विकराल जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपा।

सर कोई नाही, काट काट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रबिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचत पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत।

सोए न सके जम काल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन

काज सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा। पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत, मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिम

सिदारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै एक काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसे दिन रात।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नाम

बत अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही, गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार। तिसका अंग करे निरंकार, रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है, काम क्रोध लोभ मोह न पो है, साध संग जपे निरंकार।

पहला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो गिनसे ना एहो जाए आज जुगा दी रहा समाए ना इस उसन नहीं इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं

न लागे, कट कट अंतर सब ही जागे, तीन गुणा एक शक्ति उपाया, मां माया काकी है छाया, असल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गत नित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा, संतन के बलिहारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे, रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए, सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गौण अष्टपदियां मैला पन

सब लोग संतन के मन महा आनंद संत जपे गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पाए सगल स्थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाए पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए सगल पै मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब

जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए। नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा। कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काम।

गौंड महला गए गौंड। आकाश गगन पाताल गगन है चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम कट बिन से गगन न जाए ले। मोह बैराग पायो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म किन जियो दीन रे, हर में तन है।

कालो साथ हथ ना तोड़े तरे ध्यान वहां कह दे बठे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना कुंचर पोट ले ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद गौंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे हो ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीव ना मरता देख इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंस गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़गो काल एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ सुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंदिन ताते जाहे एक दोए मंदर एक दोए बात हमको साथर उनको खात मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का होए विनाश आगे नरक इहां भोग विलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी राव सुहागन गल सो है हार संत को बिक बिकसे संसार कर सीगार बह पकियारी संत की ठिठकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिसका बो

पग नेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उर्वार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस दिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए

छोड़े अन्न करें पाखंड, ना सोहागन ना उरंड, जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी।

तो न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुम

सोई मुकंद मुकुत का दाता, सोई मुकंद हमरा पुत माता, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड। जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंगल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक।

कहे नरहरि। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जा पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार कहे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे मेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तैरिया समाए, अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, किन बिद सागर तरिये, जीवतियां नह मरिये रहाओ, दुख दरवाजा रो रखवाला।

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिये जीवतिया क्यों मरिये, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पचोली मंगल कहताई तीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे

पहला सुन माँ चिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाध समावे रहाओ तिथिया पाए पगत पे चले होवे सो तृप्त संतोष।

पाए तनवत नानक अगम सुनाए गुरचेले की संग मिलाए। जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए। राम कली मेला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दयाई गुर पार तारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हम तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम एक सिद्ध जिन त्याया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संयम कर्म न जाना।

सत जन जाओ पांडव पाओ पवे तुत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दर

कौन बुझे विध जाने उत्पुज चलत आप कर चीने आप तत् पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिन उसन सीत बिद सोई ताकि गतमित और न जाने गुरबिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन माने हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी गुर

अधिकारी राम कला निभे पत सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम किया है भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई।

पर पंथ छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निग पावो इन विधि तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा व्यर्थ पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हों त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

पूरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै र बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिहवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुंगर साजा राम को नृतकारी देखा देखनहार दयाला जोता साज सिगारी रहाओ अपार मंडली तन सबाई ऊपर गगन चंदोआ पवन विचोला करत उकेला जल के ओपत होआ पंच तक

सब कोई ओडा नील कोई सुपेद कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू कोई बाँछे पुस्त कोई सुरजिंदु कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभु साहिब का।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम अप

बैसा कर डंडा करया, क्या तू जोगी गर्भ है पड़या। जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंखा दो देहाई। रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा रामकली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दिसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मेहमा जा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन तिस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप दया।

जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता ओ अचरज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर शरणा गुर

नीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पल कर पार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन दे अंक में माता की केतक बरन बल बल जाये ताके चरण तिन्ही किया जब तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल में परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पे परगा।

संत जनी परगास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब पूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल बिरधानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन्हीं बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन।

धन्यवाद। एकत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत कर संतोख मन पाया, संतें चरण माथा मेरो पौत, अनेक बार संतें दंडौत, एवं मन संतन के बलिहारी, जाकी ओट गई सुख पाया।

मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास गैर

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। रहाओ दिन हर सगल निरारत का।

कर कर थाके वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूरन होए हर पगतन को ना

जीवा, जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का संग भया।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

तै फौजल पार परला रहाओ। नाम निदान त्याय मन अटल, ताचू ते माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा बिन हर

संज्ञवा संत के संग राम रंग केल आगे जम स्यो हुए न मेल अहं बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नाश राम नाम गुण।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपूरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पन्नवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्तु तू आप।

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय। राम करी मैला पन्नुआ।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। रामकली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर केते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर।

गत नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती।

गावत साध संग दुख जाए रहाओ। जा कह राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सो दास अदेसा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान।

के बैसंतर पागे, माटी को जल भेद त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, काट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के, जहाँ के

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहा। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

राम भगत जम कहा पौ पा गए, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पै निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, हम दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा में

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतो।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एह चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाय लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख के ती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत्व मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सस लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी

शोध करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द

लागे जोगी ना सच पल्ले पाए इत सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे तां तंती वाजे इन

जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें, जे शरीर में हर हर नाम गुरु प्रसादी अपना हर प्रभ लहें। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन पेश करे जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख हो वह सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग दिखम है जो

भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरुमुख देव ड्याई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाए परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाए।

त्यो शरीर सर्वर है संतो स्नान करे लिवलाई नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नावे बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश।

बुझ बुझाए नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाए राम कली मैला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाए, संतो गुरुमुख पूरा पाए नामो पूज कराए रहाओ, हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज कराए, हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाए, पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए, शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु सब दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे।

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाई सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी निर सब दे मैल उतारी संतो

कृपा तारी एक देख करें फिरे अभिमानी तिंजू है बाजी हारी एक अंदिन भगत करें दिन राती राम नाम उधारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत न हुई कभी।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंगिन जागत रहे।

जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओत लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध

इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरे इस निमुख ना सरे। हम अपराधी निर्गुनियारे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुर बोहित वड पागी मिलिया। नानक दास संग पात।

ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यों तुखा मितंत, तन बिगसै गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी ज्यो राखे रखवाला, महत्ता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर ऊजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुर प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुरपूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न

लेकर आई। पुत्र कलत्र महाविद्या में गुरसाचे लाए कराई, अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। सात कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाई, अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करके प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सह सोती मन वदियां वादाइयां राग रतन परवार परियां सबद गावणियां आईयां।

द्वारा पाये तन मन तन सब सौंप गुरु को हुकुम मनिये पाये हुकुम मनियो गुरु के राजा वो सच्ची बानी कहे नान सुनो संतो कछु अकथ कहानी के मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एक परम कुलाया माया का मोहनी तिने की जिन ठगोली पाया कुर्बान की ताक सहद तू जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया के मन प्यारिया।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, संयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए।

कर्म कमाए। सहसे जीव मलिन है तुत संयम तोता जाए, मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए। कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे है तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया। कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेव की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले। आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जो को गुर के दो मुख हो।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो हे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची।

तत्व खानी हर हर नित करे रसना क्या कछु न जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन पैरवाणी कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एवं हुआ समाओ शब्द खेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक सब रतन है हीरा जित गड़ाओ शिव सख्त आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र कुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी सत्यसार न जानी गुरु बाजो सत्यसार न जानी तेही गुनी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तुम्हें विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

जग में आए चाहे क्या तुझ कर्म कमाया है, के कर्म कमाया तू शरीर आ जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रों मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है, हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा, हर तब करे सावास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाणा पावे।

गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सन

पर अपारा कट कट अंतर सोनिया, एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया, जिसनो राखे सो सच पाखे, गुर का शब्द भी

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

हरिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रया इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत म

प्रभ रख को अंचल तां कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

काटन पै हरण सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय। छंत जस दावो वड पागियो करके

जियो बिनवंत नानक सिमर जीवान जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत। रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रै रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नान।

मारे। बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

आए हरकंत जियो। ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत

जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बिसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश रे।

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त।

गर्ब गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर।

है सोताओ, नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कह न जाई, खोजत खोजत अम

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए छी जय दे खुले एक गंड छिया नित देखो जगहंड तूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त

माया निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा सी तिस बिन अवर

बचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छूटी है वड्डा आप तणी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे आप

नाए वन तेन तू डत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नान।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा।

मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान, हार डोर कंकन कने करथा की सीगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाया।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा विचारो।

खाय औदूबो लै ज्ञाने तीरथ नाय सुख फल पाय मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिदसाई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु।

हट दर्शन एक पंथा, इन विद मन समझाइए पुरखा, बाहुर चोट न खाइए, नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगत इव पाइए, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौ मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइए सार नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरुमुख जोत निरंतर।

खास कमावे गत मित सब दे पाए। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाने जी जुगत सत जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया एक एको सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब कि

जोग जुगत सत रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी

गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट ना खावे, गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख पाव पंजन प्रदान, गुरमुख करनी कार कराए, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावे कट कट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावे, गुरमुख सगली गणत मिटावे, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर पर मैं आवे जाए, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, बिन गुर त्रिपत नहीं बिखाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट, जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार, तन हटड़ी एव मन मन जारा, नानक सहजे सचवा पारा, गुरमुख बांध्यो से

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहज्ञान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए।

गुरमुख होम में शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम करना।

परे सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय पवजल संसारो। त्रैसत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक।

अपने मन समझाए, गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल।

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अराध्या अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म राम।

आत्म सुख तारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द।

विचारे गुरमुख साच शब्द विचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर पेटे

हार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए

गया विलाए, ना किच बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए, अम्ब ऐसे ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए, लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी ना है, जिस वे खाले सो वेख है जिस वस्या मन माहे, महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख पाए, दुख विच जम्मे

पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाई जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे नानक सो तपा मुख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उप

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ करदार सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुकम वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा।

पावै तिव हर गुण तास पौड़ी। छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, आपे सृष्ट सब साजियन आप मत जीनी। सिमरत सांसत साजियन पाप कुन गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी। सब आपे आप वर्त

पै तन खीण होए लोभ रत विचों जाए ज्यो बैसंतर ताप सुध होए त्यो हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक के जन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया ता बनिया सीगार गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार परम गया ता जागया चूका ज्ञान अंधार तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार सदा रवे फिर अपना सोभावंती नार मन मुक्तिगार।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरुमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

अनुसार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुझ जेवड़ दाता नाए किस आस सुनाये, गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाये। रख तत सादा बाहरा सची वड़ियाये, जिसनो बसे तिस दे आप ले मिलाये। कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख।

0: कडवही तलबा कौफन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आय तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला।

जा जप तप सब किछ मन्ने अवरकारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिसे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए।

पौड़ी काया अंदर गरकोट है सब दिसंतर देशा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच करती ऐसा सब किस सच्चो सच।

नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी। मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले। गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले, अंतर प्रगास कट चानना हर लद्दा तोले। आपे परम पुलाइंदा किस कह न जाई श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

लीता, सब किछ कर ही माए है वडभागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपके मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंजाया कत गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पारे सुई तागा सीवे, क्यों पत पाती सिख

सात सवार गर्भ न कीजय नानका, मत सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले। भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सेवी सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु देहो दिखा ले, हूँ किस देवा मन अपना, नित हृदय रखा संभाल, इक सतगुरु बाहरा, एक जीवन संसार, जन नानक सतगुरु।

सतगुर संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निज नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरणार्थी को सच वैन सुनाई जो तो करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जान, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

जिसने मस्तक पाद तुर लिखिया सो सिख गुरु कह आवे आप तरे आप तंग सब तारे सबा सृष्ट छावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह नित पर

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ।

इकसकी शरणाए इकस्यों का तिरहड़ी दूजी नाही जाए। इको दाता मंगिए सब किस पल्ले पाए मन तन सांस।

मुल ना किद्दा मैं कू सतगुर दिता तून वजाई थी जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा लगा रंग चरणार बिंद

जीव दै दे गुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दै नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दै लैने करे उन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दै मत

खती है, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

मुच गरूर लब विना है मानसा ज्यो पानी बूर वरे दरगे गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ ना लग गई तू ओ थरूर नौ निज नाम निदान है तुद विच परपूर।

आग जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशी कुजुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे।

बारे ले उर्धरिया सोने मजे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया सहज सुन इक बिरवा उपजिया करती जलहर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन इहो बिरवा देखिया मुंदरा मोन दया कर चोली

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन चिंता, मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपत चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

उड़ी आकाश मधे परमी अले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले राव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये

कौन शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो। अपसठ तीरथ गुरु दिखाए कभी पीतर ना आओगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया। कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय अस्बान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तौ न

ला पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई। संतो

तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चंद ना सूरज पौन ना पानी साथी जागी गुरमुख जाने उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे इस कला जो जाने पे हो ए तै पास परम गुरुदेव दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रह।

बचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया पास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभ ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

सल लै सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक कौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर किरपणे।

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये।

हर अकप कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई आम सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मेला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहा तपत बुझानी अमृत बानी तृप्त ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नाही विसारियो रहाओ बरन चेन नाही किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा विखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

आठ पहर गुण गायण रहाओ। साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल बित पाप गवायण, पूरन पूर रहे कृपा निध, कट कट दुष्ट समायण, जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल न लायण, दो कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अस

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अग

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथ पी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम।

सो बिरथा सास बिचारे, कृपा कृपा कर दीन प्रभु सरनी, मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है।

ब्राह्मण सुत वजी है दैदुस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभ खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनू मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुबजा को ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे मानुख

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे।

के मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे बन बन टूट

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे सृष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वर्त है कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

मिलो सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारे नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया रिद अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करिया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदर हम लिख कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन कीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगमा।

पचै पतंग मृग त्रिंग कुंचर मीन इक इंद्री पकर संगारे पंच पूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावो सत्संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचे जब उन वह कन कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल विस्तारे जो जो निवे साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड बिखारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले पर उपकारे संत संत मिले मन बिगसे जो जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभु पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वडपागी गुरु दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सत्

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल विच पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलाया गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंब है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीत बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

जहाँ कै सिमरन मूर्ख चतुर, जहाँ कै सिमरन कुल है उदर, जहाँ कै सिमरन पौ दुख हरै, जहाँ कै सिमरन अपदा टरै, जहाँ कै सिमरन मुच्चत पाप, जहाँ कै सिमरन नहीं।

खाए बिलास। जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाज तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक।

पुर नैन दर्स पे खून स्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे।

हजूर, करण करावन हाजरा हजूर। रहाओ सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपना।

बाप माँ दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बोना नारे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासा रे राग मारू मैला पहला कर पहला चौपदे।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

दुखे माए, सुख थोड़े दुख अगले, दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े, मिलिया का क्या मेल, साहिब सो साला ही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग, विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई।

किछ खाजे किछ तर जाये जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जपरे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो हैं हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना

बिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय, मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

गहो जार ले अमर गहो मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जाय मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस नह कंद चीजे पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस नह कंद चीजे मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख राव ब्रह्मा विष्ण रिखी मुनि शंकर इंद तपे पेखारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनिया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत भी

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हों मैं जलिया मनो विसारे जमपुर वज्जे खड़क करारे अब कै कहे नाम न मिली तू सौ जीड़े पारी जियो माया ममता पवे ख्याली जमपुर फासेगा जमजाली हेत के बंधन तोड़ न साके।

नानक शरण तुम्हारी जियो, मारू मैला तीजा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जै बैसा ले तै बैसा स्वामी, जै पे जै तै जावा, सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र है थावा, बाबा देहे बसा सच गावा, जाते सहजे सहज समावा राव, बुरा पला किछ आपस ते जानिया, ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का हुआ, वरते एहो संसारा, इंद्री तात सबल कहियत है, इंद्री किस्ते होई, आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई, गुर प्रसादी।

का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है। तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ न पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वड्याईया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा। पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्या

शब्द भेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए। इहो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए। तंदे पूर्व आपिया जमपुर चोटा खाए। नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए। भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए। मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार। तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार। बाबा साचा साहिब हृदय समाल। सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ। एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए। गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए। एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए। ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए। जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास। मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए। सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए। मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ। सतगुर के बचन अराध तू अंदिन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एक को जानिए जा सतगुरु देव।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जम्मे आवे जाए ओए जम दर बदे मारिये हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लेओ हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए मारू मेला चौथा हौ पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास हौ तिस विटो खन खनिए मैं मेले हर प्रभ पास मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास गुरपूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूणिया तिख मोहिया कंदी पास गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार हर।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुरशब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन धरती हर बीजिए विच संगत हर प्रव राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ।

हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पा

पहला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विकाटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलदियां नाल सखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर ना जाई जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हौं अंदिन नाम लही करता रे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। दे तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया, छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा, कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रुबारिक, हर सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे। रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे, विदरदासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे। कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्त न वित्त प्रमयो बहु पांते अनक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुक्ते सुन कर

लक्ष्मण विराते, पंच तत्व मिल पयो संजोगा, इनमें कवन दुराते, जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो मैं पाई, जन्म मरण उसी को है रे, ओहा आवे जाई, बरन चेहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पणत नानक जब खेल उज

अहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मां कथन न जाई निरपो पे सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

तारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत विचारियो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कभू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

ठाया था। अनुपौ अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तैं अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जम्या निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने करो प्रगास।

सत थान सच बैठता सच स्वाव बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू मेला पंजवा।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा। नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहार।

भी गद है, एक सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया, होए अवतूत।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसियो जीता के, साध संग पै जन्म के, गत पाई नानक नगर नह लिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते बिरथा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक किरत ना जाए मिटायो, पस पंखी पूत अर प्रेता, बौद्ध जोनी फिरत अनेता, जह जानो तह रहन ना पावे, थान बिहून उठ उठ फिर पावे, मन तन बासना बहुत जिस्थारा, अंगमेव मूठो बेचारा, अनेक दोख अर बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाई, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार गिरामी, प्रमत प्रमत प्रभु स्वर्णी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभु दयाल दुख दर्द बिगारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंधकूप के काडन हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह का

नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उधारन तारन बल बल बले बल जाये ऐसा कोई पेटे संत जित हर हरे हर त्याये मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछै, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुर जाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल सियानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ बिना पे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने मेरे मन नाम नित नित ले जलत नाही अगन सागर सुख मन तन दे राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिस सीध नवल नवतन चतुर सुंदर मन नाम

पंजवा चलत बैसत सोवत जागत पुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु भव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर।

गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु न हार मारू मैला पंजवा। तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो, तिसें प्राप्त नाम ते।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सोड सगले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा। पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ,

हुआ। पंथ ताक कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पवाई जोनी, रहन न कितनी थाए।

तुमरो प्रदान है कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थाने आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्रा

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो गन काहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुद सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाये मारू मैला नामा माई में मन को माना त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहा होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुराग्यो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अक्षदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हस्त तीर्थ बहु कहा परम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहा हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अक्षर तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

जाए पाए कार कमावणी। नित तोता से सारा साची संगत थान सच सच्चे करवारा। सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा। सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा। मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा। मानस दात न हो वही तू दाता सारा। अगम अगोचर तू टनी अवगत अपारा। गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा। नानक मेल न चूकई साके वापारा। मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार। कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार। वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल। बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ। सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार। सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार। सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार। गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए। आवागौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए। गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए। सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस। पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोष। गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख। मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए। गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए। जम्मन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए। हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए। जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए। जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए। तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार। जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार। गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार। सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार। सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार। गुर मिले खसम पछाणी है कहो नानक मोख द्वार। मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ। जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ। मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ। बाबा मैं कुचील काचो मत हीन। नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ। अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे। जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय। जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार। आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार।

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसै नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नव तनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय। मैला उजर तांतिये पारस संग पी जय। वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय। पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने। पूछो वेद पढ़न से आमूठी गिन माने। नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने। मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे। अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे। दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका। तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द नाची ने। उदर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी। गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी। राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी। कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी। कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी। परम पुलाना शब्द नाचीने जुए बाजी हारी। अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे। गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे। निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे। अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे। छाणी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है। अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है। पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है। नाम न जपे क्यों सुख पावे।

आत्मज्ञाना अमृत छोड़ महा बिकती रहे माया का देवाना कृष्णा मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विचों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा न डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी।

पहला मात पिता संयोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरयो पार अपार कर रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ने जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे चित उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कप कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तौले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे कां को दोष तरे दिन गुरबाद जीवन होर मरना दिन गुर सबदे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर कर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

दुहागनी सावरने क्यों जाओ मैं गल औगण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेरे फिर समला सावरने करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास।

सच्चा साथ न टुटई गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ, गुर बिन एता पव सकी, गुर तिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ, साथ लड़े तिन नाथिया।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुती निस दे हो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

मैं एक जोत दो ना हो मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना गुरुद्वारे ना पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कह पाने मन वस

जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचो दुरमत होवे। रंग सो नित रलिया माने, अपने कंत प्यारी जियो।

जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया।

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर

जम कंकर किछ ना कही, मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा पंडार, जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार, दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह, आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार, अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन कोट दान स्नान, बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास, बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास, मारू मेला पंजवा।

महासागर नह व्या पैख न उतरियो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत, ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत, कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद, शीत मंद सुगंध चलियो सर्व थान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान, सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए, चरण शरण सनाथ एहो मन।

गोपाल गुण नित गाओ नानक। पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभु की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निध रिध सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं जीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगती संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होई मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे फिर जमे।

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया।

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यो पावे त्यो राखो रहना, तुम स्यो क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे। जो तुझ सेवे से तुद ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल उपाय समाये, अलख न लखना जाई है। कर कर साकी मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है। फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दीस है, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई। पर पुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है। जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार।

होर न दिसे वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर देखू लिवलाई है मारू महला पहला दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर दिन फिर नींद न पाई है अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अंकार निवारे तत्सर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामन है समाई है माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई।

कर जो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वड्याई निरपौ मन वस्या लिव लाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साथ मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हौ मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए पी है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसायन साचे राती हर प्रभ संगी पौ ना पराती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पौ तरना जत कप देखो तेरी सरना दुख सुख दे।

नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परखे साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेते धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाने मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सोजी।

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व दिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे।

की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है। भोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्पुमी।

वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो किस करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूड़ कमावे, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाच कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाय है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत एह बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, जिह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पर आई, पर पड़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हौ मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पड़ पड़ अगन सागर देला।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करनंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पावजल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

कथ गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुरु मिले ता सोजी होई बिन गुरु बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपे अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रवछा जय पौन पानी बैसंतर गाजय मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ कीना है नाम विसा

चौरासी नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अथ पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अन दिन कीर्तन की नाहे, कूड़ छोड़ साचे को तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर केवा पारी विरले, लैला हा सौदा की नाहे, हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे, प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

कुदरत तू सिर से दाता सब केरो कारण की ना है। एक दर सेवे दर्द बंजाए कोई दरगे पैदे सतगुरु छाए हो मैं बंधन सतगुरु तोड़े चित चंचल चलन न दीना है सतगुरु मिलो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखी है मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा।

कनेरे नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर

यम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पर पाही। अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

थाकत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है। हच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत मिल काया कीनी, किसमें राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोष रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हो मैं ममता करदा आया, आशा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती।

तुम्हारी, तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवें चलावे हैं, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवा गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे सब निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पी जय शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक टिकी जय, अंतर चोर मुह कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले।

चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बांधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे जो कुंडी मीन पर आता है साकत फांसी पड़े अकेला जम वस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुरु बाजना बेली कोई ऐथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलले सलल मिलाता है फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है गुर की पगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जाने सतगुर अलक कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन्न एनत निर्मल ज्योत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जय। जिन सतगुरु हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे। जिन कर चतर करे विचारे आपे करता कर कर।

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आख है आपे दाना सच पराख है। जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरुमुख सब चलाहा है। सुन सुन आख है कीर्ति बाणी सुन कही है को अंत न जाने। जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिस सर पर मरना कृत पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काकी सौदी तोता आवे गुरुमुख वणज करे प्रभु पावे पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजाई ज्यों तुद पावे।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी ताया नगर नगर घर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस्त समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुरसब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर सापे हुक्म रजाई दसने पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इकवासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरे कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पौने खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपो कह करवाएंदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखें आप बैठ बिजमंदर, नानक साच कह।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ गिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किरे न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देव डियाई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा, मारू महला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुकम अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा, खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओ पत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा, ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेत नहीं खै काला, नरक सुरग नहीं

देख ना कोई ना को नाथ कहाएंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आंख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएंदा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान ना गऊ गुआला संत मंत्र पखंड न कोई ना को वंश बजाएंदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान त्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं।

ना सो शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पर

नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे दसवें वासा अलख अपारे सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा रब सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंदा गर्म है हाट पटनवा।

ते पंडार है सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे जम जम धार न मारे फेटे ज्यो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा आपे वर्ख अमृत तारा रतन जवे हर लाल अपारा सतगुर मिले ता पूरा पाये प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ ले अमोलो कभी न काटस पूरा तोलो सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा बिरला को पाए पूरा सतगुर मिले मिलाए गुरमुख होए सो हुकम पछाने माने हुकम समाएदा हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दीसे जगत उपाया हुक्मे सुर्ग मच पयाला हुक्मे कला रहाएदा हुक्मे तरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गैनारंग हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी हुक्मे सास गिरा सदा फुन हुक्मे देख दिखाएदा हुक्म उपाय दस अवतारा देव दानव अगणत अपारा माने हुक्म सो दरगह पै जाए साथ मिलाए समाएदा हुक्मे जुग शक्ति गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएदा काया कोट करे मैं राजा नेब खवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताएदा सत संतोख नगर में कारी जत सत संयम शरण मुरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे।

सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुनो तरत आकाश उपाए दिन थम्मारा के सचकाल पाए त्रिभवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी कुछ कुछ चलत किया सुर करते विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोय किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकि कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सप्त पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरुमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरुमुख समझे रोग न होई हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगे जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परिघाषा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोई मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को न्यो कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा आशा मनसा हो मैं सहसा नरलो भी कूर कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाज सच्चे करबारा नानक निर्मल नाद

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निरा।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रसमाते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी जी सब तेरे।

पाया, पंच तत् मिले तन किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आज जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, सखत सलाम होवे दिन राती, क्यों साथ बढ़ाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया।

पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वस

दस में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना अगल करे गुरु ज्ञान समाना काम क्रोध ले गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाने सब विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साची जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथ है देख है अपरंपर, पुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुर मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साए काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम

पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे है नस ज्योत निरंतर देखे आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुरै देखाया सतगुरु मिलो आपे प्रभ तारे सत कर सूर दीपक गहनारे देख अदित रहो लिव लागी सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए अनपौ पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजे हर जपिए अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन से तीरा दुकट कट पौ पंजन पाई है बाहर जन्म न जाया भगत हेत गुर सब तरंगा हर जप नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सवाया जिन जप जपियो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये अंतर की दुबदा अंतर जरिये पंच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुरु है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला सुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुरु जाने सो निरपौ गुरु शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वसया एनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बार सो प्रभ जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिह लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्ते ताक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम से आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तंते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गै जस गाया सत गुर मिले ता महल बुलाए साची दर गै गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा विख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसार दुख बिना सन सेवो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वडी आए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्त है नानक हर गुर पाया वाचे है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाए, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत पुरे बिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सतगुर सेवे, जरा जम तिस जोहे न साचे, साचे स्यों बन आई है। कृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हौ मैं विचों जाई है। गुर ते बूझे ता दर सूझे, नाम विहूणा कत कत लूझे, सतगुर सेवे की वड्याई, कृष्णा फूक गवाई है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया,

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हूँ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुरबिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का दाता, हो मैं मार तृष्णा अग्र निवारी, सब चीन सुख होई है, काया कुटुंब मोह न बूझे, गुरमुख होवे ता की सूझे, आम दिन नाम रवे दिन राती, मिल प्रीतम सुख होई है, मन मुक्तात दूजे है लागा, जन्मत की नाम वो अपागा, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है, काया कुसुद हो मैं मल लाई।

श्रृंगार है, मर मर जम में शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलियावट पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक सब जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हो होर ना जाना, सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हो मैं सब देखोई है। आपे गुण

साची ते पत होई हे मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई मन मुख निंदक पत

पाए सुवाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोग पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेख है, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पा

सीता मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है, अवगणियारी कंस न पावे, मन की जूठी झूठ कमावे, सिर का साव न जाने मूरख, बिन गुरबूझ न पाई है, दुर्मत खोटी खोट कमावे, सिगार करे फिर खत्म न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है, आपे हुक्म करे सब वेख है, इकना बख्श ले तुर लेख है, हम दिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई है, हूँ मैं तात मुह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मेल है आपे कर वेख है, बिन सतगुर बूझ न पाई है, एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोह सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु न जाई है, काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, सतगुरु सेवा के सुख पाया, हर के नाम समाई है, दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोह दुख माए समानी, बहुते पेक करे नह पाए, बिन सतगुरु सुख न पाई है, किसनो कही है जा आप कराए, जित पावे तित राह चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, ज्यों पावे तिन चलाई है, आपे करता आपे पुगता, आपे संजम आपे जुगता, आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है, सेवड पागी जिन्नी एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता, इक है गुप्त प्रगट है आपे, गुरमुख परम पहु जाई है, गुरमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जिस तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है, मारू महला तीजा, सत्साला ही गहर गंभीर है, सब जग है तिस ही कैचीर है, सब कट भोग वै सदा दिन राती, आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाही, गुर प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या कट अंतर, टूटी जम की फांसी है, किस सेवी तै किस सलाही, सतगुर सेवी शब्द सलाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम, अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा, बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूझे, जिस अंतर नाम निवासी है, सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पोजन सच आधारा, सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित कट हर नाम निवासी है, हों तिन बलिहारी जो साचे लागे, हर गुण गावे अन दिन जागे, साचा सुख सदा तिन अंतर, रसना हर रस राशी है, हर नाम चेता अवरना पूजा, एको सेवी अवरना दूजा, पूरे गुर सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है, प्रम प्रम जोनी फिर आया, आप पूला जा सतम पुलाया, हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे, चीने शब्द अवनासी है, काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी, डुबदे पात्र मेल ले हो तुम, आपे साथ नाम अविनाशी है, ना कोई करे ना करने जोगा, आपे करे करावे तो होएगा, आपे बस ले सुख पाए, सभी नाम निवासी है, तिर तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वन जब अपारा, सच तन जमया कोट ना आवे, अंतर नाम निवासी है, हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय, आपे बस ले नाम दी जय, गुरमुख होवे सो पत पाए, इकत नाम निवासी है, अंतर हर तन समझ ना होई, गुर प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख होवे सो तन पाए, सभी नाम निवासी है, अनलवाओ परम पुलाई, माया मोह सुध न काई, मन मुख अंधे किछु न सूझे, गुरमत नाम प्रगासी है, मन मुख हो मैं माया सूते, अपना कर न संभाले अंत विगूते, पर निंदा करें बहु चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है, आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख

मन मुख ना बूझे फिर आणी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदिन आर जा छी जाए अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जम काल ना सूझे ऐठे कमाना सो अग्गे आया अंत काल क्या की जाए जो सच लागे।

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचे अमृत पी जाए, किलविक दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूझे। अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे। वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने। उन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा।

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम न दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत न आवे, बूझे को विचारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ा।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी हम दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे और माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है। हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खत्म।

पहला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्त है एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहु चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण मय समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्नेह प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आये सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह

दर साचे साच पछाता है मारु सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द विचारा। जो तुद भाव है सोई करते सच्चे सो मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब

गुरुमुख हो वह तो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पचाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुरु कै शब्दे मोक्ष द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एको दाता।

आपे बख्शे सच दृढ़ाए मन तन साचै राताहे मन तन मैला विच जोत अपारा गुरमत बूझै कर विचारा हौ मैं मार सदा मन निर्मल रसना सेव सुख दाता है गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा तिस विच नाम है अत अपारा गुर कै सब सदा दर्शो है हौ मैं मार पछाता है रतन अमोलक अगम अपारा कीमत कवन करे बेचारा गुर कै सबदे तोल तोलाए अंतर शब्द पछाता है सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे गुरमुख विरले जाता है आपे करता करे कराए सच्ची बाणी सच दृढ़ाए नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाता है मारू महला तीजा को सच सेवियो सृजन हारा सबदे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम असहा है आपे सच्चा सत वरताए एक जन सच है आपे लाए साचो सेवै साच कमावे नामे सच समाहा है तुर पगता मेले आप मिलाए सच्ची पगती आपे लाए साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्मे का लाहा है गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे एक बिन को अवर न जाने सच्चा साव सच्चे वन जारे पूंजी नाम विसाहा है आपे साजे सृष्ट उपाए विरले को गुर शब्द बुझाए सतगुर सेवे से जन साचे काटे जम का फाहा है पन्ने करे सवारे साजे माया मोह दूजे जंत पाजे मन मुख फिरे सदा अंध कमावे जम का जेवड़ा गल फाहा है आपे बख्शे गुर सेवा लाए गुरमती नाम मन वसाए अंदर नाम त्याए साचा इस जग में नामो लाहा है आपे सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवे मन वसाए जिन मन वस्या से जन सो है तिन सिर चूका कहा है अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाए सदा शब्द सलाही गुण दाता लेखा कोई न मंगे ताहा है ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावे अलख वेवा जिनको नजर करे तू अपनी गुरमुख अलख लखाहा है पूरे सतगुर सो जी पाई एको नाम मन वसाई नाम जपी तै नाम त्याई महल पाए गुण गाहा है सेवक सेवे मन हुक्म अपारा मन मुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई हुक्मे वे परवाहा है गुर प्रसादी हुक्म पछाने तावत राखे इकत करयाने नाम मेरा ता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहा है सब जग में वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सब सलाहे से जन निर्मल निज करवासा ताहा है सदा पगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुर

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहे नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या वेसाहा है से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई शब्द सुने ता दूरों पा गए मत मारे हर जियो वे परवाह है हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए, गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है, गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे, गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अंदिन लें दे लाहा है, गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे, अंदिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है, सतगुर पूरा सब सुनाए।

गुरमुख बिरला बूझे कोई, नानक जन नाम सलाहे, बिगसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा, गुर प्रसाद रविया कट अंतर, तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरते एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिस दे शब्द निस्तर है संसारा, आपे करता कर कर वेख है, दींदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए, गुर के शब्द रते रंग लाए, हर साला है सदा सुखदाता, हर

सतगुर पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे सबद सदा गुण गाए, गुणदाता वरते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवे सो जंत्रा पै, अंदिन सेवे सच्ची बाणी, सबद सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभ साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुद नो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुर कै शब्द अमृत की आया, अमृत की अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तक अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्द कारज केहा है, छिन में हसे छिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज न होवे, संयोग विजोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हास्यों सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याए, हों मैं रोग ना ताहा है, रस रस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, काट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस ताहा है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पतारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न ताहा है, कंचन देही शब्द पतारो, अन दिन पोग पोगे हर्ष्यों प्यारो, महला अंदर गैर महल पाए, पाना बुझ समाहा है, आपे देवे देवनहारा, किस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बक्ते सब

हर जप जाप समाहा है मारू महला तीजा गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएदा गुरमुख मनुआ उल्ट करावे गुरमुख बाणी नाद बजावे गुरमुख सच रते बैरागी निज कर वासा पाएदा गुर की साखी अमृत पासी सच्चे सबदे सच तुवाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे सच

सबसे मैं सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएदा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा। गुरुमुख हो वह मन

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी, आपे काप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

जिस विच रविया शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वंजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सबदे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पेते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर

कोई नाही। जब लग गुर का शब्द न कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा। काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा। सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा। पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर। जिनकी ते जांच से पछाने, माया मोह चुकाएदा। एक माया मोह

अच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की।

कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा अपना आप पछाने आपे गुरमती आप बुझाएंदा पाताल पुरिया लो अकारा इस विश्व वर्त हुक्म करा।

मत देह सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा आन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दो साखी आए मन मुख अंग ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवने सब वजाएंदा, करता करे सुने क्यों होवे, गुर कै सबदे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम ते आएंदा, गुर सेवे जे वड होर लाहा नाही, नाम मन वसे नामो सालाही, नामो नाम सदा सुखदाता, नामो लाहा पाएंदा, बिन नामे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वदे विकारा, नाम न सेवे क्यों सुख पाए।

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सह समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले है जो तिल कहानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर प्रजा

अपना पाना आप मनाएंदा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएंदा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएंदा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाएंदा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रब करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

सत्संगत बह गुण गाएदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चौ कुंडी सुनिए साचे नाम समाएदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाएदा वड्डे पाग एवो शरीर पाया मानस जन्म सब चित लाया दिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएदा एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएदा गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसै सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएदा हों में गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर के शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा सोचे ते जिस आप चिताए गुर के शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर के शब्दे आप

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम कुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएदा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिलाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएदा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम से आए दिन राती, उत्तम पदवी पाएदा,

अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले नाम न चेते बद्दा जमकाले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाएंदा गुरमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाएंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया आपे आप मिलाएंदा माया मोह परम न पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे इस जानदे बिलम न लाएंदा इहो मन पै पाए रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे पाग को इहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाएंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा व्यापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करे अरदास तू आपे मेल बहा ले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यह मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

खेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे स्यों चित लाया। हौं मैं विच सब जले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए।

रे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरवारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे।

ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुरते पाई, सतगुर को सद बल जाई है, प्रगटया सूर निस्मिटया अंधे

पुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है, गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए, नाम में नाम रते सुख पाया,

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता तिन

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता, हर तिसे श्रे वो प्राणी है, जा को राखे हर राख।

सब आशा मन सा पूरे थारी, जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन बिहानी है, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे।

गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय हे, मात गर्भ में जिन प्रत पालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम।

स्थान थनंतर अंतरजामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग तन ताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने जीत आवो वसो कर अपने लख चौरासी नरक न देखो रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊंच अथा अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा कीने कर गोले अनहद ऋण चुनकार।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन रात।

जित उतरे भूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझै चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अबना सी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खटकर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाने, साधु तूर जाचे जन तेरे ना।

तिथे हर त्याय सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था, क्यों मिलिए प्रभ वे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना।

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा,

पूजै सतगुर साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसे ते पायणा जां की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लाएना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संते संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सब

सब सिमरें अगनत ना जाई जस गना सिमरें पस पंखी सब पूता सिमरें बन पर्वत अवधूता लता बली साख सब सिमरें रव रहा स्वामी सब मना सिमरें थूल सूखम सब जनता सिमरें सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरें प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरें नर नारी आशर्मा सिमरें जात जोत सब वरना सिमरें गुणी चतुर सब बेते सिमरें रैणी अर्दिना सिमरें कई मूरत पल निमखा सिमरें काल

परम रुणा गुर का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भाग है सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पे खारी जन बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हाँ।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार ना।

एक रविया सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रविया त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्संद। गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

आन सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों सेवक।

जाई। अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा, कीमत कोई न जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सुज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, इहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवार्यो आसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

सो होई परम पौ मिटिया साध संगते दालद ना कोई काल का उत्तम बाणी गाओ गोपाला साध संगत की मंगोर वाला बासन मेट ने

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद्विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत बेद

सदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप।

ला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहे समाए मोल मोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ नानक पूरा तोल है कबो न होवे काट महला चौथा नाम विहूने परम सह आवे जावे नीत इक बांदे इक टीलिया इक सुखिए हर प्रीत नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा हर का नाम मन वसया गुर शब्द विचारा सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार विचो मल कटे अपनी कुला का करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कढे विडार नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना दूजे ना तरे प्यार मैला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान नानक नदरी पाई है दरगे चले मान पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बने आई एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए नानक मन तृप्तासी है सिफती साचे नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिक जाली नाए पौड़ी माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस

प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया कृपा करके अपनी गुरशब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस थाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त पहे फिर तृष्णा भुख गवाया। श्लोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी शोभावंती नार। महला पहला ससुरे पेये कंत की कंत अगम अथाओ नानक तन सुहागणी जो पावे वे परवाह। पौड़ी तख्त राजा सोभ है जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए पूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या साल आई है जिस जानदे बिलम ना होई नेचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे सो नेचल होई।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा, मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है, जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वर्ती जाए, गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुर सब दी कमल विकास।

मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या ले ओ, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, पेखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे।

नानक जे इव मारिए गुरसबदी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुटिए जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

पास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे खिन

सब तुद लागे। श्लोक महला पहला। सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ, कालर लादस सर लागनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला। पूंजी साचो नाम तू, अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मल।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन कै मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा फरीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोय महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

लाल लवाए अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चले एहो खुट कदे ना निकुट खाए खर्चियो पल्ले हर जन नेड़ ना आवे जम कंकर जम कले से सा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाये जा आप हर कल्ले श्लोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी।

हुकुम मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक मैला तीजा, इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए, अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए।

पाए रहो तिस बिन अवरना कोए खाना शब्द चंगिया जित खा दे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण न विहाजे कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुकम मन्ने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी अंदर राजा तक

ताओ सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ श्लोक मैला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही तू हो मैं हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसे समाहे महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए कल युग विच संसार आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौ जल बिखम संसार पौड़ी मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सासत न सोदनी मनमुख विगुते बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते तत ज्ञान विचारे।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सब दी रचा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध।

देख कपड़ भोग डरावने जे चरपरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो

तू होर तू पाए न लबई अब नासे श्रेष्ठ करण दखने महला पंजवा। जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछे को।

आपे सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यों ज्यों।

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

शिव सकत वरताइया, शिव अग्गै शक्ति हारिया, एव हर पाइया, इक विच्चों ही तुद रखिया, जो सतसंग मिलाइया, जल विच्चों बिंब उठा लियो, जल माए समाइया, दखने

खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा। ए वरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा, लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा। आनंद भया सुख पाया।

कौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतर गुर थोड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जान आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म तीरा कर अंदरे, यो पापी मूल न तगे। ऐ कर

जान गंदरबा नगरी सुख घटाऊ डोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करें चंद्रायना से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़ाई स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म संवारा आपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहू गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार पुड़ावी छड़ संभल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुवावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को

जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पर्दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया महला पंजवा।

है हेरिया दुख ही मैं पचा। हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखने महला पंजवा परबाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए। जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा दे अंधारी अंध सुंजी नाम विहुनिया। नानक

मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाए का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनासी। दखने महला पंजवा दिखी अब ढंडोल, हिकस बाज ना कोए, आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आसक आसा बारा मुँह मन वड्डी आस, आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे होद, बाज त्यारे अपने बिरही ना धीरोध। पौड़ी तट तीरथ देव देवालया केदार मथुरा काशी, कोट ते पीसा देवते सन इंद्र जासी। सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी, पोथी पंडित गीत कवत कवते धी जासी। जति सती सन्यासिया सब काल है वासी, मुन जोगी दिगम्बरा जमै सन जासे। जो दीसै सो विनसना सब विनस विनासी, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक फिर होसी। श्लोक दखने

सुख समुआ भोग भूम सबाई को धनी नानक हबो रोग मृतक नाम विहोनिया। महला पंजवा हिकस को तू आए पछाणू भी हिक कर नानक आस

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिन तो पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा स्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाओ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करें पुत्र कलत्र सने

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्म राम रहो, जटा भस्म लेपन।

राम उदक जे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते पया निरास। सब सच नजरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम रस

समावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होई, कहो कबीर जो नाम समाने

कह कभी मन मानिया। जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन। जब जम आए केस ते पकड़े।

आओ धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी नित्ती पारी पंच कसान वा भाग गए ले बाजो जियो दरबारी।

बिन बै अनुभव होय वणा हम्बे। सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े, हुक्म बूझे ता निर्भो होय वणा हम्बे।

मुकत चारे सिद मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद राज भवीकन अधिक करयो नवनिज ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंध है झूठ। स्वान सुकर बायस जिमें भटकत चाल्यो।

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभू न सिमरो राम। कह कबीर चेत नहीं मूर्ख मुगत गवार राम नाम जाने।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म।

ओन बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया। साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बाणी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर।

सुख मैले नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहले। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पक्ष है अगन रस सुख है मरिय चौख है भी सो किरत नहारे रस फिर छाया धन ताते की।

सावन सर्प मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादो परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रब तै ही जाई है, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मिले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बल तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रस सुख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडज धीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तय बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, वेद समारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुर

पाखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर पो भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख।

सच संभालिया अहमित देख बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मारपति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरदिया हर चरनी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन निहानी अवगुण भी सरया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल सा त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभ गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़े घर सबद पतिनी साहरड़े तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं बस

वह चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वह नानक मीरा हीरा बेदया गुण कह हार परो वह गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिस साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सचगर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरे आ छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अव

हर सिमर एक अंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है इस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारे आ। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत्य नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टों कुमाए। हम पात्र गुर नाव बिख पव जल तारी है राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारी है राम। हम मूड मुगद किस मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख मात। जिनको तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाओ पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। सुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर वटवारे तिनका थाओ थे ओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार।
सतगुरु प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा, सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे। निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा। कृपा करें ता पीवा, आस प्यासी फिर कह ताई। ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभु मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका। केदारा महल

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कई है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात गल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मती जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी प्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी।

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवों पेख दर सारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात।

मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिरे लिखत तुर मात केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नान

आओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरुष अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्याप संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निध गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरण आई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सहे जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सुसवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कह बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहू ना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरणे संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे।

उस्तत निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना, लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है, ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा, कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहना सा,

बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए। मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए। कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारत जाए। राग केदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार। सतगुर प्रसाद खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे। चरणार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख। किस जात ते के पदे अमरयो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पैला कर पहला चौप दे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कबहु न छूटत बिरथा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन विद तरकु तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे हुए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबहू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा।

नहीं पाए। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंग कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने। शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साच पति ने। पैरों महला पहला, गुर के संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सोजन ऐसा मैं मन पावे। आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो। कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो। साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पच पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण। गुर प्रसादी पाइये, अमर पदार्थ ते किरतार्थ। सहज ज्ञान लिवलाइये, मन रे राम भगत चितलाइये। गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइये रहाओ। परम पेद पाओ कभो न छूटस, आवत जात न जानी। बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ। पैरों महला पहला, जगन होम पुन तप पूजा। देह दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत। मुक्त नाम गुरमुख लह, राम नाम बिन बिसे जग जन्मा। बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे नेफल मर प्रवना। राव पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने, संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल शिखा सूत तोती, तीरथ गवन अप प्रमन करे। राम नाम बिन शांत न आवे, जप हर हर नाम सोपार परे। जटा मुकुट तन पखम लगाई, बस्तर छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, कीर्त के बांधे पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक चोल पिया।

तम दिन देसो ब्राह्मण होए जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा।

है बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, भरत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला की जा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम ना चे

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन्म।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों में लाती जा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाते।

दुख विचकार कमाए, गर्व जोनी विच कदे ना निकले बिस्ता माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम न पाया रहा। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वडियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार। से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। जिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिनकी रेण पूरे पाग पाई है, जिनी राम नाम चितलाया पैरों महला तीजा। शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाई है। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता ते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग स्योरलिया माने जो कुछ कहे सो पर।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूज न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुख दाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम ना करे। रहाओ माता उपदेश प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा होए रघुराया हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझले उबार फिर मैं पयान रूप निक्षया थम उपार हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार सवारे प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे गुर के शब्द हो मैं बिख मारे नानक राम नाम संत निस्तारे पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ अन दिन पगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई मूरख दुबदा पने मूर

मेलो सब संगते टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझते बाहर कोई नाहे। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे तुझसे मेरे कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब तय भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजू।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों मेला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत हुए हमारी तिनका दर्स देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत हुए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुरजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

नानक कह कर केवल नाम। पैरों महला पंजवा जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया। संत जना की लेहो मते

सुकाया खत शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दैदिस पवन चलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को ना।

अनहद शब्द वजे दरबारे, कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। पैरों महला पंजवा, कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार कै संगी पांथ, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो सिमरै तिसकी जत होवे, तीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान, सिमरत नाम पहे ने काम, राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पूरन आचार, नानक दास इहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरों महला पंजवा, लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ। अपना खसम जन आप आया, याना पापी ओ आप पचाया, प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंदक का माथा इहां उहां काला, जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेच्छ पापी।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा कवन बिख्या रस माता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस ताज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का सात कहते मेरा अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों मेला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार

बल बल जाये जी कट प्रति आए पैरों मेला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिकसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ हेज न पाया बिन सतगुरु।

सतगुर सेवे खुले कपाट, अंकर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवे ना जावे कोए। पैरो महला पंजवा, जिस तू राख है कुछ कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वैजे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरवाजे।

जन नानक अपर न साचे कोए, पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

तब कारा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, द्वितीया नासत इक रहा समाये, राखो पैज नानक शरणाए, पहरो मेला पंजवा, बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे दामनहारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना दिखे सब काज, नाम

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सब ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मैला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर बिनसानो, एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरो महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता शहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, गुरु मन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे।

पाधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

माया पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अपार।

का स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सेई प्रदान है।

सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, पैरों महला पंजवा सबके ऊंच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार, ऊंचे ते ऊंचा जाका थान, कोट अगा मिटे हर नाम, तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके कर्तव्य लखे न जाए, जाका परवासा सब कट माए।

फिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विख्या का सब

नानक आया सो परवान, पैरों महला पंजवा, संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दूख साम, दान दैत निंदक को जाम, संत संग करें जो बाग, किन निंदक नाही किसाद।

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार स्वामी।

ने मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयानता पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणता।

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु दिवस कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

जो पावे त्यों रखो गुसाई, पैरों मैला पंजवा, गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ। गुरमुख जप्यो हर का नाम, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए राओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मन

नानक को गुरु कहे दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो, तीर्थ नाए कहाँ सुत सैल, मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंद।

करण कारण समर्थ गुरु मेरा, जी प्राण सुखदाता मेरा, पै पंजन अवनाशी राय, दर्शन देखे सब दुख जाए, जत कत पेखो

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्धे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्धे, हर सिमरत

जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग। नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार। पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो। दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार। जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी। आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए। तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग। गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके। ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न। नानक दास से जनतन, पैरों मैला पंजवा। भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद। पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरो महला पंजवा पै कौ पौ पड़या सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

सुच हर माने, अंतर मेला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

जस सुनी। नानक सेव अपार देव तटह खटे बर्त पूजा, गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी। पैरों अष्टपदिया महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम, राम मह आत्म, चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

एक चलत उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मन मुख पूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान हौ कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाटी पांदे कह आया नाम बिना नहीं पढ़ो अचार।

करते अपना रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई, हर जियो कृपा करूं मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुर के।

पाए। मन मुख मरे तिन किछु ना सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै

தர்த்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

उत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

फिरे बासक कोट सेज बिस्तर है समुंद कोट जाके पानी हार रुमावल कोट अठारे पार कोट कमेर परे पंडार कोटक लक्ष्मी करे सिगार कोटक पाप पुन

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वा के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार।

पुकार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे करताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण ले सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

काए गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

मन मुख मोए नाही हर मन माहे, मर मर जमे पी मर जाहे, से जन जीवे जिन हर मन माहे, साथ समाले साथ समाए राव, हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर पवे सिर पावे तूर, हर आपे जन लिए लाए, तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

दूर, गुर कै शब्द रहा भरपूर, जी जंत की करे प्रतपाल, गुरु प्रसादी सद समाल, दर्शा चै पक्षों कर जाए, नानक नाम बड़ाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मनते होए, एको वेखै और न कोए, दूजे लोकी बहुत दुख पाया, सतगुर मैनू एक दिखाया। मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत, ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव, गुर पूछो तुम करो विचार, ता प्रभु साचे लगे प्यार, आप छोड़ होए दासत पाए, तो जग जीवन वसे।

सोई करे जे हर जीव भावे, सदा सुख शरीर पाने चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द देखे सद हजूर, सावकणी फूली बन राए, गुरमुख बिगते सह सुभाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर भोग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए, बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे, एको चेते फिर जून ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया, सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम सेवो विच

जानिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक सियान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच।

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

पल लै पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता से जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसै।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाई।

देता जापी आद मंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कै लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नी चूका अभिमान सह

बनस्पत मौली चढ़िया बसंत, हे मन मौलिया सतगुरु संग, तुम साथ से आवो मुग्ध मना, ता सुख पावो मेरे मना रहाओ। इत मन मौलिए पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक सब आख बखाने, हुकम बूझे ता एको जाने, चहत नानक हों मैं कह न कोए, आखन वेखन सब साहिब ते होए, बसंत महला तीजा, सब जुग तेरे कीते होए, सतगुर पे तै मत बुद्ध होए, हर जियो आपे लहो मिलाए, गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ। मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलिए राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उदारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा, तिन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा, बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए, ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा आपे लाए, मूल लगे ता सतगुर पाए, आप बसंत जगत सब वाड़ी, नानक पूरे पाग भगत निराली।

पूर्तिना की अकुलिय पाई, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मिलावा होए। राग बसंत मेला चौथा हर पहला इक्के इक्को अंकार सतगुरु प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, ज्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सब दी मिलिए मेरी माए। रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिए एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर, एको एक वरते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे। रहाओ मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी। बसंत हिंडोल मेला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विख मल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे वडे पाग।

जन जप्यो नाम निरंजन ना हर उपदेश गुरु हर प्री दे जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी हर अमृत हर जल नी दे हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बिनंती जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल मेला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे दिल कर नहीं वाता पाई है गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाई है गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है हूँ मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाग लगाई है रहाओ कर रतन लाल बहु मानक ला दे मन प्रम्या लह न सकाई है ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाई है जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाई है मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है बसंत हिंडोल मेला चौथा आवन जान पया दुख बिख्या दे मन मुख सुन्जी सुन्य राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकड़े काल सुलुंज गोविंद जी ओ बिखो में ममता मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज राव सत संगत साथ दया कर मेलो शरणागत साधु पंज हम डूब दे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध।

नानक जाचे एक दान कर कृपा मोहे देव नाम। बसंत महला।

तैसे उधारन गुरे पीर तुम दाते प्रभ देनहार। निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण इक गुण ना जान, हाँ कछु न जानो तेरी सार,

तनो टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू ते आया से गनी जिन तू पाया से पनी जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक परे बसंत महला।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए इह पद निर्वाणी। रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूरन अर्था।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार करके।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुरपूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा।

गुरु चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम, जप जीव नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर्षित आवे, बिन सत गुरु दी सह बिल लांती, साकत फिर आवे जावे, रहाओ।

साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, कर्म प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले टिक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

क्या है भाणा कहो नानक कह कया दुआरे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

की गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरे दे।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला इक तुकिया मत पसम अंधु

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंदुला अंदली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंदले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के

तू अकल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैला।

करेंगे कर कर सिर्फ तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका करी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

आपे जल अपवंतर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया इको अंकार, सतगुर प्रसाद सुन साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

मन उदरण का साधना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम ति आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम से आयदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ, कित

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पद राम नाम।

बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गौ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव सह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो।

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जय जिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर।

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी तारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

ते त्रुट टुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लगे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई परफूलत, पुरुष निरंजन देखिया हजूर।

हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे, जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे, अनदिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रस।

मन मुख प्रम दूजे पाए लाजे अंतर अज्ञान गुबारे सतगुरु दाता नजर ना आवे ना उरवार ना पारे सर्वे कट कट रलिया स्वामी सर्व कला कल धारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सुस

सांस वसे मन आए, गुर कृपाल पै तम पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए।

मन हर हर कथा सुखानी रहाओ, दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी, नैनी बिरहों

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्म

हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन

वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर अराधु, हर के जन साधु हर राम बोल, हर राम बोल सब पाप गवा दू। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा। मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख, जन नानक हर सो मिले।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई न

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करें सोम पाक हिरण।

आन उपाव न को सूजे हरदा सा सरणी पर रहा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा। सार महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत विरागी।

मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरा कहो मैं छीक गांठरी बांदा रहाओ निस्बासुर नक्षत्र विनाशी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंध विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत बिनादा चार विनाशी खटे विनाशी एक साध बचन नहीं चलादा राज विनाशी ताम विनाशी सातक पी देनादा दृष्टमान है सगल विनाशी एक साध

आए जो जो शरण पर्यो करणा निद ते पवे तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकुर के रसना हर गुण गाए देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न कत

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदे तत पछानिया रहाओ। पर विरत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा, जौलो हृदय नहीं।

医生。खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जा के लेख मसामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

और ब्रह्मचर्या यह उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल बिना से जो आवे हर संत शरण आप जपे अवर।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत